कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकामूर्त अजूनी सैभं गुरुप्रसाद। रागदेव कंडारी महला चौथा कार पहला।

सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे, जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख पाग सुभागे। रहाओ।

काहेरेन मन चिदव उदम जाहार हर जियो परिया सर पथनम जंतु पाए ताकार जग अगै कर तरिया मेरे माधौरी सत संगत मले सुतरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सुके काष्ट हरिया रहाऊं जन न पिता लोक सत बिनता कोय न किसकी तरिया सिर सिर

तन कवन खलावै कवन चुगावै मन मह सिमरन करिया सबन धान दस्त अष्ट सिधान।

काटा सीसा सरी असकेत जगत के ईसा पहु पन पन बृष्ट गगन ते भई सब एन बदाई दही धन्या धन्या लोगन के राजा दुष्ण दहा गरीबन वारा अखल पवन के सृजन हारे दास जान मोहल हो बारे कवियो बाच बिनती जो पई हमरी करो हाथ दे रचा पूर्ण होए चित की अच्छा तब चरणन।

मोह बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिखिय सबै कर तारा। मोरा चांद कर दे करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाट कोई अवर न त्याऊं, जो पर चाओ सो तुम ते पाऊं। सेवक सिखिया हमारे तारिये, चुन चुन सत्र हमारे मारिये। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास नरिए। हुरो सदा हमारे पच्चा, सरियस दुजज करिय हो रच्चा। राख रे हो मह राख नहारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो प्रिय चतुर्द सकंता। कार पाए ब्रह्मा बपतरा, कार पाए शिव जू अवतरा। कार पाए कर बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन का जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन पुजायो। आदान दे कैवतारा, सुई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तस ही को हमारी, सकल प्रजा दिन आप सवारी। सिवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को परमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, बल्ले बुरे की पीर पहचानत। चीटी ते कुंचर असतुला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतान दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचान, कट कट के पट पट की जान। जबूद करक करा कर तारा, प्रजा तरत तब देह अपारा। जबा करख करत हो कबू, तुम मैं मिनत दे तर सबू। जेते बदन सृष्ट सब तार, आप अपनी बुझ चार।

बुद्ध है रीति बरनत पिन पिन तू है तीती तुमरा लखान जाए पसारा कहे बुद्ध सज्जा व्रतम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पे और राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहोर चदीनी कहूँ फूल राजा हुए पेठा को सिमट पियो शंकर कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंब वाद जुगाद स्वरूप सुयंब अब रचा मेरी तुम करो सिखियो बार सिखिय संघरो दुष्ट जिथे उठवत उत्पाता सकल मलेच क्रूरन काता जिस तुझ तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुख तो है मरे पूर्ख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक पारतिया है ताके कारण कट है रिछा होए ताहे सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहार हो ताके ताप तनक मह हर हो रिद्ध सिद्ध करमो सब होई दुष्ट चाच वैस कैन कोई।

खड़ग खेत में शरण तिहारी, आप हाथ दे लहू भारी, सर्ब ठोर मोहो सहाई, दुष्ट दोख दे लहू बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन शुभ राता, खिर बिख सकल देह को हरता, दुष्ट दोखिन को चह करता। श्री अस तुज जब भेद आला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन पांचत फल पावै सोई, दुख नत सैव आपत कोई अड़िल। सुने गुंग जो याहे सुरस ना पावई, सुन मूर्चत राय चतुरता आवई, दुख दारद पौ निकट तिन नरके रह, हो जो या कि एक बार चोपी को कह चोपी। समत सत्रह सहस बनिजै, अर्ध सहस फून तीन कहिजै, बादर सुदीष्ट मीर ववारा, तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा समयां।

अनेक कह मत एक न मानियो। सिमरत शास्त्र वेद सब बहु भेद कह हम एक न जानियो। श्री सपान कृपा तुमारी कर मैं न कहियो सब तोह बखानियो दोहरा।

राम गनी महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तपाया सहर सेती, मन बजिया वाधाइया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावन आइया। शब्दोत काव हो हरि केरा, मन जनी वसाइया। कह नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं।

साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करत तेरा सब कुछ है जिस देहे सुपावई। सदा सिबत सलाह तेरी नाम मन बसावे, नाम जिन कै मन बसिया वारे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा धारू साच नाम तार मेरा, जिन भूखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आय वसिया, जिन इच्छा सब पूजाइया। सदा कुर्बान कीता गुर भट हो जिस दिया एह वडियाइया, कह नानक सुनहो संत हो शब्द त्रहो प्यारो, साचा नाम मेरा धारू। वाजे पंच शब्द तत्कार सपागै, कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तदवस कीते काल कंटक मारिया, दुर्कर्म पाया तद

ओथे तेरी रखे अग्नि उधर माहे, सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाहे। भाओ जर बखमस गाहो गुरु शब्दी पार पाहे, जिनको लगी प्यास अमृत से खाहे। काला मह एहो पुन गुण गोबन गाहे, सब सैनो कृपाल समाल है साहे साहे। बिरथा कोय न जाए जे आवे तुद आहे। सुरोक महला पंजवा अंतर गुर आराधना, जिहवा जप गुर नाऊ। नेत्री सतगुरु पेखना सरबणी सुनना गुर नाऊ। सतगुरु सीती रतिया दरग है पाया ठाऊ, कहो नानक कृपा करे जिसनु एह वत दे। जग महोदम काढ़िये विरले के महला पंजवा, रखे रखन हार।